0: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो 3 लाख बहुत कम लगा भाई, हम तो 10 लाख लगा देंगे पेनाल्टी तुम्हें,
1: जी
0: या तो विड्रॉ करो नहीं तो फिर हम तो 10 लाख रुपए पेनाल्टी लगा दे, तो लोग विड्रॉ करके चले गए, अब उन्होंने पेनाल्टी पे किया होगा। तो देखिए ये भी एक जो एक मन में आता कि अगर कोई काम है। चौथी चीज जो मैंने देखा कि आप अगर किसी चीज के प्रति निष्ठा हो, जब मैं देश के प्रति, मैंने कहा बचपन से मेरे मन में बहुत ऐसा भाव है कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, भगवान ने मुझे मौका दिया अपने देश के लिए करने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश प्रथम राष्ट्र प्रथम की भावना, तो वो हमेशा मन में रहती है, तो उससे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है
1: जी।
0: तकलीफ होती है, कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन आप कठिनाइयों को पार कर जाते हैं, क्योंकि आप उसके ऊपर लगे रहें तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है जिससे कि आप उसका सोल्यूशन कर लेते हैं।
1: और अगर आपका उद्देश्य सही हो तो निर्णय भी फिर अडिग रहता है।
0: बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
1: और ऐसा मैं मानती हूँ कि जैसे भगवान जो है वो ऊपर से नीचे नहीं आते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो उनको भी माध्यम चाहिए होता है ना, अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करने के लिए या उनके कष्ट दूर करने के लिए। तो ऐसा मैं मानती हूँ मोदी जी को भी जो है देश को आगे ले जाने के लिए उनके पास भी जो है कुछ ऐसे हाथ होने चाहिए जो उनकी मदद कर सकें, एंड मुझे ऐसा लगता है उनमें से आप भी एक हैं जिस वजह से देश आगे ही बढ़ता गया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक छोटा सा और ब्रेक लेते हैं और फिर वापस लौटते हैं और अपनी चर्चा जारी रखेंगे। श्रोताओं कहीं मत जाइएगा, हम जल्दी ही लौटते हैं।

0: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
1: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au।
2: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
3: भाई बहुत ज्यादा रेयर है, मतलब इस तरह की एक्टिंग बहुत रेयरिटी से आपको मिलेगी। फिल्म की जो विमेन कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो राधा हो, सत्यभामा हो या रुक्मणी हो, ये सिर्फ यहाँ पर सिंबल्स के तौर पर यूज नहीं किए गए, बल्कि असल इमोशंस के तौर पर इनको पोर्ट्रे किया गया है। ये मूवी दिखाती है कि इनफाइनाइट को लव करना, जिसको हम अनंत भी कहते हैं ना, उससे प्रेम करना एक इंसान के लिए कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। विजुअली भी ये फिल्म एक्सपेंसिव नहीं लगती, ये अपनी इंटेंशन के साथ में हमारे सामने आती, मतलब हर एक फ्रेम आपसे कुछ ना कुछ कहता है, एंड इसीलिए ये बजट नहीं बल्कि विजन का कमाल है। कृष्ण अवतारम एक सिंपल माइथोलॉजिकल या एक सिंपल हमारी पौराणिक कथा के ऊपर बनी हुई मूवी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसमें कि कृष्ण को दिखाने की नहीं बल्कि आपको फील करवाने की कोशिश करी गई है, एंड शायद इसीलिए ये फिल्म अलग भी दिखाई पड़ती है।
2: हाँ श्रोताओं, तो ये इस पिक्चर को देखने के लिए और हम लोग जो फ्री पासेस दे रहे हैं, दो पासेस दे रहे हैं कृष्णावतारम पिक्चर की, और जो उसके लिए आपको हमारे दर्पण फोरम में मदर्स डे के मैसेजेस को भेजिए और हम उसमें से ड्रॉ करेंगे दो मैसेजेस को और उनको एक एक पास देंगे। एक पास में दो टिकट होगा।
4: मिश्रा जी से और बहुत सारी बातें हैं जो हम पूछना चाहते हैं डियर्स, लेकिन समय हमेशा भागता रहता है, लेकिन कुछ ज़रूरी सवाल ज़रूर पूछना चाहेंगे। तो ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश में आपने काम किया उसके बारे में हमें बताइए कि अयोध्या में आपका क्या, आपका बहुत योगदान रहा अयोध्या में प्रभु श्री राम लला के मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उसके बारे में बताइए कि क्या योगदान रहा, क्या भूमिका आपने निभाई।
5: देखिए ऋचा जी, मैं तो देश का पार्लियामेंट जो हमारी लोकतंत्र की का मंदिर है, उन्हें पार्लियामेंट को बनाने में लगा हुआ था
4: जी।
5: उसी बीच में मुझे लगा कि शायद मुझे और थोड़ा वक्त मिलेगा
4: जी,
5: लेकिन मुझे आदेश हुआ कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के रूप में जाने के लिए।
4: अच्छा,
5: तो मुझे लगा कि उसमें थोड़ा मन में एक बार धक्का जरूर लगा था मुझे कि इतना बड़ा चीज़ मैं बना रहा हूँ लेकिन मैं इसको उद्घाटन नहीं करा पाऊँगा। वो जो उद्घाटन कराने वाला होता उसको श्रेय सारा जाता
4: बिल्कुल
5: है। लेकिन यहाँ क्या था कि मुझे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 500 साल के बाद
4: जी
5: भगवान राम का मंदिर बन रहा था
4: जी,
5: वहाँ मुझे मौका मिला। तो पूरा अयोध्या का ट्रांसफॉर्मेशन, वो 2.5 साल मुझे जो मौका मिले उसमें अयोध्या का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, आप जब जाकर के अयोध्या को देखिए, चाहे उसकी सड़कें हों, चाहे वहाँ बिजली पानी जो व्यवस्था जिस प्रकार से कर रखा
4: है, कहते कायाकल्प उसको कहते हैं,
5: तो उसमें काम करने का जो आनंद आया बहुत आनंद आया। और सबसे बड़ी बात, प्रभु उसके सामने मैंने मेरे नत्र भीग गए थे जैसे मैं प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। मैंने कहा भगवान आपने मुझे बुलाया इस काम के लिए कि मैं इस कार्य को करा सकूं। उसके बाद चाहे काशी का कायाकल्प हो, प्रयागराज में बहुत सारा काम, बहुत सारा उत्तर प्रदेश, माननीय योगी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा यूपी का ट्रांसफॉर्मेशन जो पिछले 8-9 साल में किया है
4: जी।
5: आप देखिए कि यूपी से सारी इंडस्ट्री भाग गई थी
4: जी,
5: इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो शुरुआत किया काम माननीय योगी जी ने शुरुआत किया
4: जी।
5: उसके बाद हम जिसमें मैं मुख्य सचिव था, उन्होंने मौका दिया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे।
4: अच्छा,
5: उन्होंने टारगेट रखा कि 10 लाख करोड़ रुपए तक का हम लोग एमयू करेंगे और 27 नई पॉलिसीज, मैंने इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज अलग अलग सेक्टर्स के लिए तैयार की गई
4: जी।
5: इतना सारा किस्म का जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम किया गया, जो स्किलिंग के लिए काम किया गया, नतीजा ये हुआ कि लगभग 35.5 लाख करोड़ रुपए का एमयू साइन हुआ।
4: वाह,
5: फरवरी 2023 में
4: जी,
5: और जब लोग कहने लगे कि भाई अभी तो ये सब सारा फर्जी है
4: जी,
5: अगले साल 2024 के फरवरी में 10.26 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को ग्राउंड कर दिया गया। जो पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई
4: जी जी,
5: उसमें 10.26 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट को ग्राउंड कर दिया गया
4: जी।
5: ये उत्तर प्रदेश का अचीवमेंट था जो माननीय योगी जी ने एक नई ऊर्जा जो, और खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इस प्रकार का एक पूरे देश के लिए एक माहौल बनाया है, सबके कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया है
4: जी,
5: कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, हर एक राज्य एक दूसरे राज्य से कम्पीट कर रहा है
4: जी।
5: तो इसमें उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए
4: जी
5: तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है
4: जी।
5: तो इसको करने में मुझे इतना आनंद आया ढाई साल में, मुझे लगा कि ये भी भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया अपने राज्य को काम करने के लिए।
4: तो क्या यहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हुई, क्योंकि पूरा भारत भ्रमण आपने किया है, और जो लोग आपको फॉलो करते हैं जिनमें से मैं भी हूँ, कि मुझे नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा मंदिर है जहाँ आप नहीं गए हों और जहाँ आपने अभिषेक नहीं किया हो या दर्शन नहीं किया हो। तो क्या यहाँ से शुरुआत हुई थी?
5: नहीं, ये तो मेरा बचपन के संस्कार है, पिताजी ने जो दे
4: जी,
5: रखा
4: जी,
5: है।
4: जी जी,
5: बचपन के मेरी माँ बहुत ज्यादा श्रद्धालु थी, बहुत पुजारी थी। मेरी माँ तो महीने में कम से कम, मैं समझता हूँ, 10-12 दिन तो व्रत करती थी वो।
4: अच्छा,
5: इतने किस्म के उसके व्रत होते थे, प्रदोष का व्रत, तो सोमवार का व्रत, तो एकादशी का व्रत, तो अमावस्या का व्रत, क्या क्या व्रत करती थी वो।
4: तो मदर्स डे
5: इतना पूजा पाठ मेरी माँ करती थी। मेरे पिताजी भी बहुत बड़े आध्यात्मिक, तो पढ़े लिखे कम थे
4: जी, जी।
5: लेकिन आध्यात्मिक और बहुत ज्यादा सच्चे दिल इंसान थे।
4: तो घर में एक अध्यात्म का माहौल, हमेशा पूजा पाठ का माहौल रहता था। तो दर्पण रेडियो पे हम मदर्स डे भी मना रहे हैं, तो आप अपने अपने माता की बात शुरू ही की है, तो कुछ और बताइए उनके बारे में कि कैसा उनके साथ कैसा अनुभव रहा। पिता का तो बहुत योगदान रहा आपके एजुकेशन में।
5: बिल्कुल, मेरी माँ बहुत सहज थी।
4: अच्छा,
5: वो बिल्कुल एकदम इस प्रकार का, वो जो ऐसा प्यार देना, मैं तो देखे जब मैं रांची गया
4: जी
5: पढ़ने के लिए, विकास विद्यालय रांची।
4: किस क्या उम्र रही होगी?
5: मेरी उम्र समय करीब 12 साल की उम्र थी
4: जी।
5: तो मैं जब वहाँ से आता था तो इतनी सारी चीजें बनाकर मेरे लिए रखती थी, सहेज के रखती थी
4: जी जी।
5: तो उसका एक सहज प्यार था
4: जी।
5: और दूसरी हमारी बड़ी दीदी,
4: अच्छा,
5: हमारी बड़ी बहन जो हमसे करीब 7 साल बड़ी है
4: जी,
5: उनमें भी मातृत्व भाव था
4: जी।
5: वो भी बड़ा ख्याल रखती थी हम लोगों का। मैंने मुझे समझता हूँ कि मेरे बचपन में पढ़ाई लिखाई के बारे में और सब चीज़ के बारे में दीदी का बहुत बड़ा हाथ रहा है।
4: बहुत सुंदर बात। तो चलिए, बातें बहुत कुछ करनी है, जल्दी जल्दी हम टॉपिक्स कवर करते हैं। थोड़ा OCI के बारे में बताइए कि उसमें क्या योगदान रहा आपने।
5: अगेन, ये जैसा मैंने कहा कि ये एक संजोग ही मानिए, भगवान की ऐसी कृपा मानिए कि मैं जब ज्वाइंट सेक्रेटरी बना
4: जी
5: 2004 में, उसके पहले हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी
4: जी,
5: उन्होंने एक निर्णय ले लिया था कि हम डुअल सिटीजनशिप, मैंने कैसे हम लोगों को एक ऐसा अधिकार दे दें जो हमारे विदेशों में जो लोग रह रहे हैं
4: जी,
5: ताकि वो आएं और आकर के उनको अपने देश में काम करने के लिए भी, अपने देश में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ शिक्षा लेना चाहते हैं, हर चीज़ का मौका मिले
4: जी।
5: लेकिन स्वभाव वो चीज़ माननीय अटल जी ने तो इसको अनाउंस कर दिया था
4: जी,
5: और उसके बाद होम मिनिस्ट्री को आदेश भी कर दिया था करने के लिए, लेकिन वो कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा था।
4: अच्छा,
5: तभी मेरी ज्वाइंट सेक्रेटरी फॉरनर्स की पोस्टिंग हो गई।
4: अच्छा,
5: मैं डायरेक्टर से ज्वाइंट सेक्रेटरी बना
4: जी।
5: और मुझे खुद लगा कि हमारे साथ के पढ़ने वाले लोग, ये सब IIT से लोग तमाम सारे विदेशों में चले जाते हैं
4: जी,
5: और देश से उनकी पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाते हैं
4: जी।
5: तो अगर हम उनको एक ऐसा मौका दे दें कि जिससे कि वो जब चाहें तब हमारे देश में आए और आके इन्वेस्टमेंट करें
4: जी,
5: या अपने आकर के जो भी काम करना चाहें करें, देश के साथ जुड़ जाए
4: जी,
5: क्योंकि मन से तो जुड़े होते हैं लेकिन और तरीके से उनको तमाम इतनी सारी उलझने होती है जिसके वजह से दूर हो जाते हैं
4: जी, बिल्कुल सही।
5: तो इसको जब मुझे मौका मिला तो इसको एक साल के भीतर भीतर
4: जी,
5: ये मैंने OCI की स्कीम इतनी सक्सेसफुल, आज करीब 50 लाख से ज्यादा लोग इस OCI बन चुके हैं और कहीं किसी को तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ये इसका नतीजा ये था कि इसको पूरा का पूरा कम्प्लीट डिजिटल माध्यम से
4: जी,
5: मैंने जो एप्लीकेशन है बिल्कुल सिंपल एप्लीकेशन, और एक एप्लीकेशन में पूरे परिवार की एप्लीकेशन
4: जी,
5: और उनको क्या मिलना है वो भी उनको पक्का है। उनका जो यूनिवर्सल वीसा, मुझे ख्याल है कि पहले बार देश में ये वीसा मैं नागपुर के जो प्रिंटिंग प्रेस में जाकर के बनवाया था, जिसमें उनका फोटोग्राफ भी आता था, उनका सिग्नेचर भी आता था
4: जी,
5: और ये सारी चीज़ हम ऑटोमेटिकली कैसे कैप्चर करते थे उनके एप्लीकेशन से, उसको कैसे हम उनके पास डायरेक्टली भेज देते थे, इतना सिंपल तरीके से हो गया
4: जी।
5: लेकिन साथ ही साथ सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते थे
4: जी।
5: उनका पूरा का पूरा जानकारी उनके बारे में कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसकी ऐसी चीज ना हो पाएगी जिससे कि कोई गलत लोग जो कि देश की दुश्मनी वो करते हैं वो लोग इसमें आने पाए। तो इसका लाभ हमारे देश को मिला है। आज तो अभी अब तो EOCI हो गया है।
4: अच्छा।
5: पूरा डिजिटल OCI हो गया है
4: जी, जी।
5: तो ये करने का मुझे मौका, और पहले बार 2006 में जब माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी के हाथ से हैदराबाद में
4: जी।
5: पहले दो लोगों को OCI मिला, और उसके बाद तो फिर ये मामला खुल गया।
4: अब तो ये सिलसिला ही, और आपकी दूरदर्शिता की भी दाद देनी पड़ेगी कि मतलब आपने इतना सोचा।
5: इनफैक्ट इसका मैं एक और चीज बताऊँ, इसका दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये मिला OCI से कि जो ये काम किया उसमें उस समय के कैबिनेट सेक्रेटरी बीके चतुर्वेदी साहब थे, उन्होंने मुझे बुलाया, कहा कि तुमने इतना बड़ा काम कर दिया
4: जी।
5: इसी काम को तुम पासपोर्ट सिस्टम में भी कर दो।
4: अच्छा।
5: और मैं पीछे लग कर के पासपोर्ट सिस्टम भी, आज जो देश का पासपोर्ट सिस्टम है उसमें विजय शर्मा साहब कहते थे DS जब किसी को पासपोर्ट बहुत आसानी से मिलता है तो मुझे तुम्हारी याद आ जाती है।
4: क्या बात है।
5: क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है MEA का था, लेकिन उसके पीछे में लगा हुआ था कि कैसे इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया जाए।
4: बिल्कुल। कितना कुछ आपने देश के लिए किया। सो आपकी दूरदर्शिता और आपकी जन सेवा, देश सेवा, सबकी दाद देनी पड़ेगी, उसके हम बिल्कुल कायल हैं। तो अब आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, आगे क्या?
5: सेवानिवृत्त तो मैं June 2024 में हो गया।
4: अच्छा।
5: एक साल तक हम लोग को कूलिंग ऑफ होता है
4: जी,
5: बट एक साल पूरा होने के बाद मैं आज IIT कानपुर
4: जी
5: में सस्टेनेबिलिटी के बारे में,
4: अच्छा,
5: IIT गांधीनगर पब्लिक पॉलिसी के बारे में
4: जी,
5: और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई वहाँ पर अर्बन मैनेजमेंट के बारे में, ये काफ़ी बड़ा काम इसको मैं कर रहा हूँ। वहाँ पे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में तीनों इंस्टीट्यूट में हूँ।
4: क्या बात।
5: तीन तीन कंपनीज में जो कि हमारे देश की महत्वपूर्ण कंपनी, वहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तरफ से काम करता हूँ
4: जी।
5: तीन और बड़ी कंपनियों में मैं उनको मदद करता हूँ देश के लिए जो बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा स्वच्छ भारत में वेस्ट जो इतना प्रोड्यूस होता है, वेस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे
4: management.
5: में, या रियल इस्टेट के बारे में है
4: जी।
5: या आज जो जो गवर्नेंस के बारे में टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है
4: जी,
5: कैसे हम आज AI का यूज करके हम कैसे गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे जो हमारे आज की डेट में इनोवेटर्स हैं देश में
4: जी,
5: जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, उनकी मैं मदद करता रहता हूँ। तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस या इनके जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहाँ मुझे बुलाते हैं अपने अनुभव से, जो 40 साल में अनुभव मिला देश के लिए
4: जी, जी।
5: मैं पूरी तरह से अपने देश को समर्पित होकर के देना चाहता हूँ।
4: कितनी अच्छी
5: उसके लिए, उसके लिए मैं लगातार इन चीज़ों से
4: अभी भी प्रयत्नशील हैं और उसी दिशा में अग्रसर हैं। तो कभी राजनीति में जाने की इच्छा नहीं हुई जब आप देश के लिए काम ही कर रहे हैं?
5: नहीं,
4: तो कभी
5: नहीं,
4: कोई ऑफर मोदी जी या योगी जी की तरफ से नहीं आया कि नहीं, आप जब कर ही रहे हैं देश सेवा?
5: ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं।
4: अच्छा। राजनीति में रुचि नहीं है या अभी उसका अवसर
5: नहीं? राजनीति के साथ तो देखिए, हम लोग बचपन से जब हम लोग SDM से बनकर के SDM, DM, सेक्रेटरी
4: जी,
5: प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जहाँ भी हमने काम किया सारे राजनीतिज्ञों के साथ काम किया। मैं तो देश के विभिन्न पार्टियों के और विभिन्न लोगों के साथ बहुत नजदीक से काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ, इनके लोगों से साथ काम करने का मौका मिला
4: जी।
5: लेकिन सीधे वहां जाकर के हम उनके साथ काम करते हैं वो काम नहीं करते
4: जी। नहीं, ऐसे दिमाग में आया कि, कि और ये पूछना चाहती हूँ कि इतने प्रोजेक्ट आपने भारत के लिए किए, भारत सरकार के लिए किए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी नज़र में आपका बेस्ट प्रोजेक्ट या कौन सा काम करना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा?
5: देखिए, काम तो मुझे सभी अच्छे लगते हैं
4: जी,
5: क्योंकि मन के साथ जुड़ जाता हूँ। बिल्कुल
4: जी, जी,
5: पूरे दिल के साथ जुड़ जाता हूँ
4: जी, तन मन धन से बिल्कुल लग
5: बिल्कुल जाते हैं। मैंने अब जब प्रधानमंत्री जी का जैसे कि आवास के बारे में जो उनकी एक सोच थी, उस सोच को पूरा संकल्प सोच को पूरा करने के लिए पूरी मन से अब जब प्रधानमंत्री जी का जैसे कि आवास के बारे में जो उनकी एक सोच थी, उस सोच को पूरा संकल्प सोच को पूरा करने के लिए पूरी मन से लड़ जाते हैं।

0: करते हैं।
1: अच्छा,
0: एक अमिताभ बच्चन जी का कार्यक्रम बैंगलोर में हुआ था, उसकी उनको उसका डिवास्टेशन उसमें भी बहुत सारा नुकसान हुआ था।
1: अच्छा,
0: क्योंकि हमारे यहाँ लोग अच्छे काम के साथ नहीं होते, उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा करते हैं
1: जी।
0: लेकिन उस यानी के कार्यक्रम में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।
1: अच्छा,
0: जैसे कि कैसे हमने आगरा को एक टूरिस्ट सिटी के रूप में, वहाँ पे जितने सैनिटाइज हुए उसका सारा सारा रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर को सारा सुधार किया
1: जी।
0: इतनी बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे, उनको कैसे पूरा पूरा इसको एक साथ मैनेज करेंगे। लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, PIL फाइल हुई, उस PIL को उस जमाने में कैसे मैंने उसको हैंडल किया
1: जी।
0: जो लोग वहाँ पे लोकल तमाम सारे अपोजिशन करते उनको कैसे हैंडल किया, बहुत किस्म किस्म के अनुभव हुए।
1: तो जब आप पूरा किताबें पलटेंगे, अपने सेवा के पन्ने पलटेंगे, तो कौन सा प्रोजेक्ट आपको, आप उसको नंबर वन कहेंगे?
0: हमारा सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट।
1: अच्छा,
0: सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कर्तव्य पथ हो, कर्तव्य भवन हो
1: जी,
0: वाइस प्रेसिडेंट का मकान हो, प्रधानमंत्री जी का, ये सब सारी सारी चीज़ें, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क था।
1: और क्यों क्यों उसको आप नंबर वन कहेंगे? क्योंकि चैलेंजिंग
0: इसके
1: था?
0: इसके लिए खिलाफत के बावजूद मुझे केवल एक बात का विश्वास था
1: जी,
0: कि हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है देश को बदल देने की, और ये सारे देश को बदलने वाले कार्यक्रम है।
1: बहुत सुंदर
0: और
1: बात।
0: उनका जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के पीछे फिर मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
1: उसने आपको आत्मविश्वास दिया कि मैं ये करके रहूंगा।
0: बिल्कुल।
1: तो चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत सुन के अच्छा लगा, और उससे ही शायद देश में बदलाव शुरू हो गया। तो ये बताइए कि भारत का भविष्य क्या है, मोदी के बाद योगी, या क्या आपको लगता है?
0: अब ये सब तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन देखिए
1: एक अंदाजन, जनरल एज ए जनरल
0: पब्लिक, हमारा जो देखिए भारत का भविष्य के बारे में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने
1: जी
0: विकसित भारत एट 2047 का जो संकल्प
1: लिया है जी,
0: ये हमारे भारत का भविष्य है।
1: क्या बात?
0: और मैं चूंकि बहुत नज़दीक से देश में भी काम किया हूँ, प्रदेश में भी काम किया हूँ, आज पूरे देश में इस बदलाव को महसूस कर रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो
1: जी,
0: मेक इन इंडिया हो, मेक फॉर द वर्ल्ड हो, साइंस हो
1: जी,
0: आप सोचिए स्पेस के प्रोग्राम के बारे में, आज सेमीकंडक्टर के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में, टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी जो है, हर टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर के जो भी टेक्नोलॉजी है, सारी सारी टेक्नोलॉजी में आज देश में जिस स्तर का काम हो रहा है
1: जी,
0: आज हमारी अर्थव्यवस्था जिस तेजी के साथ करीब 8% की ग्रोथ के, एनुअल ग्रोथ के हिसाब से बढ़ रही है
1: जी,
0: आज हम दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, और ये सब कुछ हो रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके जो सोच है, उस सोच से सब कुछ चीज़ें आगे बढ़ रही
1: जी।
0: आज जो स्टार्टअप का, जो दुनिया का एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हमारे देश में तैयार हुआ है
1: जी,
0: तो मुझे लगता है कि हमारा देश जिस तरह से बढ़ रहा है, जब देश आज़ादी का 125 साल मना रहा होगा, तो हम विकसित भारत होंगे।
1: क्या बात!
0: हम उन तमाम सारे देशों से, आज मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, एक विकसित देश है, हम इन देशों के, इनकी लाइन में ही नहीं खड़े होंगे, इनके लाइन में भी काफी आगे खड़े होंगे
1: जी। बहुत ही सुंदर बात।
0: लोगों का सोच है कि करीब 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की भारत की अर्थव्यवस्था होगी, आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है
1: जी।
0: हमारी 4.26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है
1: जी,
0: बहुत जल्दी हम 5 ट्रिलियन डॉलर होकर हम देश की दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं,
1: बताइए।
0: और फिर तब तक तो 47 तक तुम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे,
1: कहाँ से कहाँ, हो सकता है नंबर वन भी हो जाए हम।
0: नहीं, नंबर वन का तो नहीं, लेकिन हम मैंने उसके करीब तो
1: देखिए, देश जागरूक हो गया है, जनता जागरूक हो गई, और सब लोग इन प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं, आप जैसे लोग जो हैं आगे पताका लेके चल रहे हैं, और सारी जनता इससे जुड़ी है, युवा इससे जुड़ रहे हैं, तो ये आसान भी हो सकता है।
0: नहीं, बिल्कुल, क्योंकि देखिए युवा शक्ति हमारे देश में, जो आप अगर पीछे के हमारे बजट को देखें
1: जी,
0: हमारे प्रधानमंत्री जी की भाषणों को सुने
1: जी,
0: उनके संबोधनों को सुने, तो युवा शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा जोर है
1: जी,
0: नारी शक्ति के ऊपर बहुत बड़ा जोर,
1: बहुत
0: है,
1: बड़ा जोर,
0: क्योंकि जो इतना लेवल आज के, मैंने लेडीज को लीडरशिप रोल देने के लिए
1: जी,
0: और तीसरा किसान शक्ति पे बहुत बड़ा जोर है, तो मैंने किसानों को जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ के, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से मुख्य सचिव था, तो हमने हर एक खेत को 7 करोड़ से ज्यादा खेत है उत्तर प्रदेश में।

0: हर खेत को अपना जियो रेफरेंसिंग उसका करा दिया। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा लाभ होगा कि हर खेत की क्या उर्वरकता है, हर खेत की क्या वहाँ पे पानी की जरूरत है, कितनी उर्वरक की जरूरत है, क्या वहाँ पे नुकसान हो रहा है, क्या उसकी फसल, एक एक चीज की जानकारी हम एग्रो स्टैक के माध्यम से करेंगे। आज जो है UPI जो हमारा पेमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है
1: जी,
0: वो पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर आज दुनिया का एक बहुत सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है
1: जी।
0: आज डिजिटल पेमेंट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में हर सेक्टर में, चाहे फिनटेक के बारे में हो, हेल्थ टेक के बारे में हो, स्पेस टेक के बारे में, गवर्नमेंट टेक के बारे में हो, सब जगह इस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, जिसका नतीजा सब जगह देखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल, तो देखिए समय भागता जा रहा है और अब हमें यहीं विराम देना होगा। जाते जाते क्विकली ये बताइए कि इतना सब कुछ आपने किया देश के लिए, अपने लिए, कोई अफसोस रह गया हो, कोई रिग्रेट मन में रह गया हो कि काश हम ये प्रोजेक्ट एक और कर पाते?
0: नॉट एट ऑल। देखिए मन में तमन्ना तो है कि हम देश के लिए बहुत कुछ करेंगे और करता
1: जी, और कर रहे हैं अभी भी।
0: करता रहूंगा मैं, करता रहूंगा, क्योंकि वो देश के साथ में जुड़ा हूँ, पूरी भक्ति भावना के साथ जुड़ा हूँ।
1: तो जाते
0: मैं
1: जाते
0: मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे जो हमारे साथी है
1: जी, उनके लिए कुछ संदेश दीजिए।
0: देखिए देश हमारा बदल रहा है, आप अलग अलग तरीके से मदद कर सकते हैं
1: जी।
0: OCI बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप देश के साथ जुड़ जाए
1: जी,
0: ये सोच थी माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की
1: जी।
0: वो अपने पूरे डायस्पोरा को देश के साथ जोड़ना चाह रहे थे। आज ये सुविधा आपका उपलब्ध है, आप देश में टेक्नोलॉजी ले जा सकते हैं, स्किलिंग कर सकते हैं
1: जी।
0: आप जहाँ से आए वहाँ के स्कूल को, कॉलेज को, वहाँ के बच्चों के लिए एक अच्छा माहौल खड़ा करने के लिए कर सकते हैं। आपके पास अगर आर्थिक संसाधन है तो आर्थिक संसाधन से मदद कर सकते हैं, बौद्धिक संसाधन है, बौद्धिक संसाधन से मदद कर सकते हैं, क्योंकि देश आज तेजी से बढ़ रहा है और उसको हर तरफ से हर किस्म की आवश्यकता है उसको आगे बढ़ाने के लिए, आप उसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं
1: जी। एक सवाल और मेरे मन में हमेशा उठता है, देखिए हम तो जुड़े रहे हमेशा भारत भूमि से और जुड़े रहेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे जोड़ें? भारतीयता से वो जुड़े हैं, है ना, भारत के कल्चर से जुड़े हैं, लेकिन भारत से कैसे जुड़ें?
0: बहुत आसान तरीका है, देखिए,
1: क्योंकि जब भी उनसे कहिए कि इंडिया चलना है, भारत चलना है, और भारत में कितनी जगहें हैं, अद्भुत जगहें जहां हम जा सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि नहीं, यूरोप ज़्यादा इजी है ट्रैवल करना।
0: देखिए बहुत अच्छा साधा सिंपल तरीका है
1: जी।
0: पहले तो भारत की जो हमारी तमाम सारी जो सांस्कृतिक विविधता है
1: जी,
0: उससे बच्चों को परिचय कराएं
1: जी।
0: जब आप अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए या अपने घर बार के लोगों से मिलने जाते हैं तो हर बार तय करके जाएं कि हम इस बार चलो बच्चों को उदयपुर ले जाऊंगा या कहीं उनको जो है कन्याकुमारी ले जाऊंगा
1: जी,
0: उन्हें मदुरई ले जाऊंगा, उन्हें बद्रीनाथ केदारनाथ या लद्दाख ले जाऊंगा, कुछ ऐसा प्लान करके जाइए।
1: अच्छा,
0: जब भी आप जाते हैं कम से कम दो जगह की यात्रा कराइए,
1: क्योंकि
0: लोगों के मन में, देखिए अब आप जाइए रामेश्वरम जाइए पूरा बदल गया है।
1: अच्छा,
0: कच्छ जाइए पूरा बदल गया, बद्रीनाथ केदारनाथ इतना परिवर्तन हुआ है, आप जैसे अयोध्या के बारे में बोल रहे थे, अयोध्या में इतना परिवर्तन हो गया
1: जी, मैं तो गई
0: हूं। काशी जाइए, काशी देखिए कितना परिवर्तन हो गया,
1: मैंने
0: देश जिस प्रकार से जहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह बढ़ रहे हैं, लोगों के मन में बना हुआ कि हमारे पास सुविधा नहीं है। आज इतना सारा हमारा एयर ट्रैफिक
1: जी,
0: देश में करीब 160 से ज़्यादा हमारी एयर स्ट्रिप्स आज के डेट में, हवाई अड्डे आज के डेट में चालू हो गए, हमारी ट्रेन की इतनी अच्छी ट्रेन जो हमारा जो नए नए किस्म की जो हमारी जो ट्रेनें चली हैं
1: जी,
0: इतना अच्छा अनुभव आपको ट्रेन में होगा, हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बन गया, आज इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस वेज और हाईवेज इतनी ज़्यादा बन गई हैं। तो आज से 10 साल पहले की बात मत करिए, 15 साल पहले की बात मत करिए, आज जाकर के देखिए। तो मुझे कहता हूँ कि यहाँ से जब भी आप जाइए तो बच्चों को जरूर,
1: नहीं ये बहुत अच्छा टिप आपने
0: आप
1: दिया
0: उनको
1: है,
0: शादी बच्चों की शादी करानी है, शादी के लिए वहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग
1: जी जी,
0: जितना आप यहाँ करेंगे उसके वहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग आप जाकर के जयपुर में करिए, आगरा में करिए, कहीं भी करिए
1: जी,
0: काशी में करिए, आपको इतनी सारी सुविधाएं वहाँ पे मिल गई हैं।
1: नहीं बहुत अच्छे आपने टिप्स दिए हैं, तो आपके समय के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मदर्स डे पे कुछ कहना चाहें तो अपनी माता को समर्पित करते हुए या ऑल मदर्स उनके लिए अगर कुछ कहना चाहें? आपने बताया
0: कि हमारी हमारी संस्कृति में एक तो नारी के लिए कहते हैं यत्र नार्यस् पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता,
1: क्या बात,
0: बहुत ज्यादा पूज्य भावना है। और नारी में माँ
1: जी
0: तो सबसे पूज्य है, क्योंकि वो हमारी प्रथम गुरु होती है,
1: सर्वोच्च स्थान दिया जाता है माता।
0: हमारे संस्कृति में कहा गया नमातु पर दैवतम, मतलब कि माँ से बड़ा और कोई देव है ही नहीं।
1: क्या बात कही,
0: माने सारे त्रिदेव सब कुछ जो है, अगर हमारे भगवान जो है, भगवान भी माँ से ही पैदा होते।
1: चलिए बहुत,
0: इसलिए जो मातृ के प्रति हमारे मन में जो भावना है वो भावना बहुत ही सम्मान की, आदर की, ऐसी भावना कि तुम्हारे बगैर और कुछ नहीं है।
1: वाह, बहुत सुंदर बात। और इसी की बात के साथ आज का जो है वार्तालाप यहीं समाप्त करते हैं, समाप्त नहीं कहेंगे, विराम देते हैं। आगे जब भी आप सिडनी आइए या कुछ नया प्रोजेक्ट आए तो ज़रूर दर्पण हिंदी रेडियो से जुड़िए और हमारे श्रोताओं को इस बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार।
0: धन्यवाद ऋचा जी।

0: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accounts and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention The Open Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website, www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of The Open Radio.
1: श्रोताओं, आप पहली अभी भी जारी है और जो है आप अपने मैसेजेस मदर्स डे का मैसेजेस फोरम दर्पण फोरम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं. अगर आप उसमें नहीं हैं तो आप हमारे फ़ोन पे मैसेज भेज सकते हैं 0468-467-196. थैंक यू.
2: श्रोताओं, अब हम बातचीत करने जा रहे हैं सरोजा दास जी से. वो बात करेंगी हमसे गिरमिट दिवस पर. हर साल गिरमिट दिवस मनाया जाता है, तो आइए उनसे जानते हैं कि गिरमिट दिवस क्या है और कहाँ और क्या कब मनाया जा रहा है. तो सरोजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्पण रेडियो पर. नमस्कार.
3: नमस्कार ऋचा जी. पहले तो मैं रेडियो दर्पण को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि रेडियो दर्पण ने गिरमिट दिवस को हमेशा हमेशा जैसे सहयोग दिया है और इस बार भी दे रहे हैं. ये जो गिरमिट दिवस है, इस बार हम पहली बार ट्रेडिशन को ब्रेक करके गिरमिट दिवस और रातू से लाला सुकुना डे मना रहे हैं. ये सैटरडे 6 मई 2026 साढ़े चार बजे से होगी और ये हो रही है रिजेंसी फंक्शन सेंटर यूनिट 8/18 जोजियांग स्ट्रीट ओवन में.
2: और फिर से एक बार डेट फिर से बता दीजिए सरोजा जी. सरोजा जी जो है वो हमसे फोन से जुड़ी हुई हैं, तो हमने कनेक्शन लूज हो गया, तो फिर से हम कोशिश करेंगे. तब तक सुनते हैं सुगंधा से, हम सुन लेते हैं कि उनके पास भी एक मैसेज है, कम्युनिटी मैसेज. तो सुगंधा, आप क्या बताना चाह रही हैं हमारे श्रोताओं को?
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दर्पण रेडियो और मैं हूँ सुगंधा. इस महीने है सिडनी वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल और सिडनी डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल. सिडनी डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल है 12 मई से 14 मई तक, और सिडनी फेस्टिवल सिडनी वर्ल्ड फेस्टिवल फिल्म फेस्टिवल है 26 मई से 29 मई तक. अपने टिकट्स खरीदिए सिडनी फिल्म fest.com और डॉक सिडनी पे. बस $5 का टिकट है. अपने दोस्तों और परिवार के साथ आइए. और स्टूडेंट्स, अनएम्प्लॉयड, पेंशनर्स के लिए फ्री टिकट है, लेकिन तब भी आपको खरीदना पड़ेगा ऑनलाइन जाके. तो जब तो अपने टिकट्स खरीद लिए बिफोर द सेल आउट फॉर अ नाइट ऑफ फन जस्ट एट पैलेस सिनेमाज लोकेटेड ऑपोजिट UTS नेक्स्ट टू एली स्पाइस एली एंड ब्रॉडवे, जस्ट अ 5 मिनट वॉक फ्रॉम सेंट्रल स्टेशन. टिकट्स फॉर द डॉक्यूमेंट्री फेस्टिवल ऑन doc.sydney एंड टिकट्स फॉर द फिल्म फेस्टिवल ऑन sydneyfilmfest.com. थैंक यू.
2: तो श्रोताओं, हम फिर से सरोजा जी से बात करने जा रहे हैं. सरोजा जी, आप बता रहे थे डेट एक बार फिर रिपीट कर दीजिए गिरमिट दिवस की.
3: ये 16 मई नेक्स्ट सैटरडे है और 4:30 बजे से रिजेंसी फंक्शन सेंटर यूनिट 8/18 जॉर्ज यंग स्ट्रीट ओबन में.
2: तो ये दोनों जो कंबाइंड करके मना रहे हैं, गिरमिट दिवस और रातुसेला आपने बताया, तो ये किस तरह का प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलेगा?
3: ये जो प्रोग्राम है गिरमिट दिवस है, इसमें हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं गिरमिटियस को जो इन भारत से फिजी आए और बियॉन्ड. जैसे हम जो भारतीय हैं आए हैं 71 ईयर्स गिरमिट कमाए, लेकिन फिजी में टिके नहीं, वहां से कहीं और चले गए और आज हर एक जगह दुनिया में आप भारतीय के लोग भारतवर्ष मिलेंगे. और कुछ कुछ लोग इसमें इनके एंसेस्टर्स गिरमिट कमा चुके हैं और ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं.
2: बहुत अच्छी बात है सरोजा जी है. तो मैं ये कहूंगी कि एक तरह से आप ब्रिज बना रहे हो भारत और फिजी के बीच में.
3: डेफिनेटली डेफिनेटली, और इसमें जो परफॉर्मेंसेस होंगी वो हमारी कल्चर और ट्रेडिशन के मुताबिक से इंडियन ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट होंगे और एक या दो फिजियन आर्टिस्ट होंगे जो रातु सेलाला सुकुना डैम के कारण होंगे वहाँ। और मैं रातु सेलाला सुकुना के बारे में थोड़ा बता दूं, शायद वो पहला स्टेट्समैन था जिसको क्वीन ने से टाइटल दिया और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया इंडियंस का जो हार्ड वर्क है और हमें शायद उनसे ये नाम इंडो फिजियन मिली।
2: अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। तो श्रोतागण, हम चाहेंगे भारी संख्या में आप लोग जुड़े गिरमिट दिवस से, और कैसे टिकट वगैरह कैसे ले सकते हैं?
3: ये एक फ्री इवेंट है रिचा जी, और हमारे पास स्पॉन्सर्स है, उन लोगों ने जैसे शोल्डर टू शोल्डर लगा के ये इवेंट फ्री किया और इसमें डिनर है, आफ्टरनून टी है और डिनर। लेकिन हमारे जो फेसबुक पेज है उसमें आपको रजिस्टर होना पड़ेगा और उसमें ये है इंडियन डायस्पोरा काउंसिल एसोसिएशन की फेसबुक IDCA और उसमें प्लीज लिंक यूज करके रजिस्टर कीजिए।
2: बहुत अच्छी बात। अगर कोई कांटेक्ट नंबर आप देना चाहें कि अगर जो लोग वेबसाइट पे नहीं जा पाए तो आप दे दीजिए।
3: मैं दो कांटेक्ट नंबर दूंगी, एक पंडित प्रमोद राय जी की, वो हमारे प्रेसिडेंट है, उसका नंबर है 0431471879 और दूसरा है हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर विकास केसरवानी, उसका नंबर है 0449843496।
2: चलिए, बहुत अच्छी बात है। गिरमिट दिवस की आपको अग्रिम शुभकामनाएं और हम चाहते हैं ये बहुत सफल रहे। तो धन्यवाद सरोजा जी इस जानकारी के लिए। नमस्कार।
3: नमस्कार रिचा जी।
5: अहम ब्रह्मास्मि फाउंडेशन आपको भज कोवित्तम पर ज्ञान वर्धक सत्रों के लिए शनिवार और रविवार 16 और 17 मई 2026 को उनके वेदांत श्रवण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। सच्चे साधक के लिए भज गोविंदम कालातीत से ज्ञान प्रदान करता है जो मानव जीवन में स्पष्टता लाता है। मन को भीतर की ओर मोड़ते हुए वे हमें भक्ति ज्ञान, पूछताछ और आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। इन प्रबुद्ध छंदों का पता लगाने और भीतर गहरी स्पष्टता की खोज करने के लिए हमसे जुड़े। प्रवेश निशुल्क है। दोनों दिन सात्विक भोजन परोसा जाएगा। समय है सुबह 9 से शाम 4 बजे तक। स्थान वेदांता सेंटर, 144 ए मास्टन रोड, अमिंटन। पता दोबारा सुनिए, वेदांता सेंटर, 144 ए मास्टन रोड, अमिंगटन। कृपया रजिस्ट्रेशन करें tinyurl.com/sydneyvs। अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें श्री सुधीश नैयर जी से, जिनका नंबर है 0425368508।
6: Contact the Hindi Show for sponsorship and phone 0413-385-976.
7: दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें फोन नंबर 0413-385-976।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश।
2: तो श्रोताओं, समय हमेशा कम पड़ जाता है। मदर्स डे पे मैंने और सुगंधा ने बहुत अच्छा कार्यक्रम एक फीचर बनाया था, लेकिन समय कम रह गया है, तो आइए सुनते हैं। सुगंधा, आप क्या कर रहे हो मदर्स डे के लिए? तो कुछ बातें बताइए मदर्स डे के।
3: आज मैं अपनी माँ स्वाति अग्रवाल जी को लंच पे लेके जा रही हूँ
2: जी,
3: और फिर हम मैं और मेरी बहन उनके लिए डिनर बनाएंगे।
2: बहुत अच्छी बात है। तो क्या संदेश आप देना चाहते हो मदर्स डे पे?
3: आज के खास अवसर पे मैं कुछ कहना चाहूँगी
2: जी।
3: आज के दिन जो पूरी दुनिया में सेकेंड वीक ऑफ मई रविवार को मनाया जाता है, माओ का दिन यानी मदर्स डे। मदर्स डे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि माँ के प्यार, त्याग, ममता और उनके अनंत बलिदानों का सम्मान देने के सुंदर मौका है। इस दिन की शुरुआत कई सालों पहले हुई थी जब लोगों ने महसूस किया कि माँ एक मेहनत और उसके निशान प्यार दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। माँ वो होती है जो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चों की हर खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देती है। बचपन से लेकर आज तक हर कदम पे माँ हमारे साथ खड़ी रहती है, कभी टीचर बन के, कभी दोस्त बन के, कभी हमारी सबसे बड़ी हिम्मत बनकर। उनके प्यार बिना शर्तों के होता है और उनकी दुआ में एक अलग ही ताकत होती है। और आज अपनी ज़िंदगी की सबसे खास प्यारी लेडी के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगी, मेरी माँ स्वाति अग्रवाल। मम्मी, आप मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो। आप हमेशा मुझे हर मुश्किल में संभाला, हर गलती में समझाया और हर सपने को पूरा करने का हौसला दिया। आपके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। आपका मेरा प्यार सबसे बड़ी दौलत है। आप सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरी इंस्पिरेशन हो। आपकी मुस्कान मेरी खुशी है और आपकी दुआ मेरी ताकत। शायद मैं कभी शब्दों में नहीं पूरा बोल पाती, लेकिन आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि सबसे भाग्यशाली बेटी हूँ कि आप मुझे आपकी जैसी माँ मिली। Thank you for every sacrifice, every sleepless night, every prayer, and every moment of unconditional love. Happy Mother's Day, Mommy. I love you more than words can express. And happy Mother's Day to all the wonderful mothers and fathers who also pose as mothers for their loved ones. Thank you.
2: Beautiful message, Sugandha.

0: श्रोताओं, माँ का प्यार शब्दों में नहीं समाया जा सकता। वो हमारी पहली धड़कन, पहली मुस्कान और पहला विश्वास होती है। अगर आज आपकी माँ आपके साथ हैं तो उन्हें गले लगाइए, उनसे कहिए, माँ आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। और जो लोग अपनी माँ से दूर हैं उनको एक फ़ोन कॉल कीजिए। यकीन मानिए, आपकी आवाज़ उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगी। और जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है उन्हें याद कीजिए, उनकी बातें याद कीजिए, उनका प्रेम, त्याग और प्रेरणा जो है उसको याद कर कीजिए, उससे आपको शक्ति मिलेगी। तो आज ये था फीचर, छोटा सा, जो पूरा नहीं हो पाया मदर्स डे पे। आप सबको एक बार शुभकामनाएं। तो आज पहेली का जो निर्णय है उसमें हम एक इनाम सुनील जी देना चाहेंगे सुगंधा जी को। बहुत ही सुंदर मैसेज इन्होंने पढ़ा मदर्स डे पे और मैं तो इमोशनल हो गई थी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे मदर्स डे पे?
1: मदर्स ऑफ कोर्स, अभी जो हमारे गेस्ट जो हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, उन्होंने भी बताया कि माँ से बड़ा और कोई चीज़ नहीं होती।
0: जी बिल्कुल सही बात
1: है। रिश्ता सही है, माँ चाहे जिंदा हो या मरी हो लेकिन आपके दिल में हमेशा रहती है।
0: बिल्कुल। और माँ जो है वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता है, वो जो है अपने आप में एक जो है ना पूरी क्या कहते हैं, पूरा एक व्यक्तित्व होता है, ऐसा कह सकते हैं। माँ का प्यार किसी शर्त पे नहीं टिका होता है। और जैसा कि कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ बनाई। और ख़ासकर आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर अपने कामों में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि माँ के साथ बैठ के दो बातें करने का भी वक्त नहीं मिलता है। तो माँ जो है वो सुबह की पहली दुआ है। माँ हर दर्द की दवा है, माँ ठंडी छाव पेड़ की, माँ जीवन की राह है। तो अब समय आता है सुनील जी की पहेली का भी दो नाम अनाउंस कर दें। तो एक नाम हमने सुगंधा कांत का लिया है और दूसरा प्राइज़ हम देंगे सरोजा दास जी को। तो आप दोनों जाइए और कृष्णा अवतार मूवी देखिए अपनी मम्मी के साथ। क्यों सुगंधा?
1: तो बधाई हो सुगंधा, जो है आज हमारे पहली में मदर्स डे मैसेज में आपने जीता है और आपको मिलेगा एक पास कृष्णा अवतारम पिक्चर देखने के लिए। उसमें दो टिकट होती तो आप अपने साथ अपने
0: मम्मी को लेके जा सकते हैं।
1: okay.
0: और सरोजा जी को भी बहुत बहुत बधाई।
1: सरोजा जी बधाई हो आपको, आप भी हमारे मूवी पास के लिए जो है विनर है और आपको मिलेगा पास कृष्णा अवतारम देखने के लिए। और आप अपने साथ अपने पति को ले जा सकते हैं या
0: कोई भी फैमिली मेंबर, माँ बेटी जा सकती है शिकन को।
1: तो बधाई हो।
0: हाँ, तो और श्रोतागण जिन्होंने भी मैसेज लिखे मदर्स डे पे या रेडियो कार्यक्रम की तारीफ़ की, इंटरव्यू की तारीफ़ की, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हृदय से धन्यवाद कि आप सुनते हैं और अपने फीडबैक हमें देते हैं ताकि हम बेहतर प्रोग्राम कर सकें। तो धन्यवाद, नमस्कार। अगली बार संडे को फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।
2: You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@dapanradio.org.au.
3: आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से। अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में। ईमेल कीजिए feedback@dapanradio.org.au।